अमृत नाम निदान है मिल पी बहु पाई। जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई।

0: संतन सिओ मेरी लेवा देवी, संतन सिओ व्यवहारा, संतन सिओ हम लाहा खाटिया। केड़ा लाहा जी? हर भगत भरे भंडारा। संत जना दे हिरदे रूपी भंडारे सदा भगती दे नाल भरे रहिंदे ने, ते जेड़ा संत जना दे नाल मिल करके जपना है सतनाम श्री वाहिगुरु, ए संत जना तो लाभ प्राप्त करना है। सो मंगना करिए वाहिगुरु जी दीना दे संबंधी जियो, जो आप जी दे दास संत जन ने उन्हां दे दास हो करके रहिए, सानू सदा संत जना दी शरण बख्शो जी।
1: मांगन मांगो होए अचिंता,
0: भाई मंगण वाले हो करके परमेश्वर जी तो अमृत नाम नू मंग लेना करिए, जिस अमृत नाम नू जप करके सारियां चिंतावां मुक जांदियां ने, फिक्र मुक जांदे ने, अचिंत अवस्था नू प्राप्त करीदा है जियो।
1: नानक के हर प्राण,
0: तो इस प्रकार बेनती करदे रहिए। सतगुरु अर्जन देव साहब जी फरमाउंदे ने, हे साडे प्राण रूप परमेश्वर जी कृपा करो, संत जना दे सदके सानू भी मिलना करो। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। महाराज कृपालता करके संत जना दे सदका।

हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि

भूत बन चार चित छो न सब दूधा दारी पौन के हरि सो भुजंग जानियत है त्रिण के भचैया धन लोभ के तजैया देत नभ के उड़ैया ताहे पंछ की वडैया देत बगुला बिडाल ब्रिग ध्यान ठानियत है जेते बड ज्ञानी तिन्नो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे हूजरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के भचैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदिश फिर तुम

आग दे कनु पकोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कुड उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताहि ते उपज सब।

दासी के कहूँ राजसी सादगी तामसी हो, कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो, कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं, कहूँ भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं। कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो, कहूँ जश विद्या धरे मानवी हो, कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या, कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या, कहूँ वेद विद्या कहूँ

कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या हो तं प्रभा हो कहूं छैर छाला छ धरे छत्रधारी कहूं राज साजं।

पवित्र नहीं जन्म जात जह पुत्र व्रात नहीं मित्र मात जह करम भरम नहीं धर्म ध्यान जह नेह गेह नहीं प्योत बान जह जात वात नहीं सत्र मित्र जह नेह गेह नहीं चिहन चित्र जह रंग रूप नहीं राग रेख जह जन्म जात नहीं भरम भेख जह करम भरम नहीं जात वाद नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जह नाम धाम नहीं वर्ग व्याध जह रोग शोक नहीं सत्र साध जह द्रास वास नहीं देह नास जह आद अंत नहीं रूप रास जह रोग शोक नहीं जोग जुगत जह

न देह न केह न जात न बात है न गेह है न व्याप है न तात है न नामत है न तात है न मात न अंग है न रंग है न संग है न साध है न दोग है न ताग है न द्वय है न देह है न तात है न द्वय है न देह है न सिंग है न स्यार है न राव है न सिंग है न बान है न व्रत है न साग है न सनक है न मौत है न साग है न संग है न जच है न गंद्रम है न नर है न नार है न चोर है न सावर है न साह को कुमार है न साह है न साह को कुमार है न देह न गेह न देह को न देह न गेह न देह को न मोह न लाभ है न चित है न चित को मिलाव है न यंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप न यंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाव है न छल है न चित है न भाव है पर यह पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीब है पुराण है अभंज है करीब है पुराण है काल है अबाल है ख्याल है अकाल है रोग है रसोग है अभेद है रोग है रसोग है अभेद है फंड है नांग है नरंग है नसंग है नसांग है प्यारा है पवित्र है पुनीत है ब्रह्मा है पवित्र है पुनीत है प्रमात है नसीत है नसोच है नक्राम है नसीत है नलोज है नमोह है नक्रोध है नकाम है नमोह है नक्रोध है नदेव है नदरत है नर को सरूप न काम है न क्रोध है न लोभ है न भाव है न द्रोह है न भेद है न द्वी है न द्रोह है न काल है न बाली है सतयुग है रूप है गंज है अगंज है ब्रह्म है भूत है अपंज है परम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज छेद है भूत वेग है प्रिय रूप रग रूप है वेग है घटित रूप है करांग क्रोध करण है न जात है न पात है प्रचित रजिहन बजा है न पात है प्रचित रजिहन करण है बेअंत है अनंत है अनंत तेज जानी है मोह अभेद है सदा अछेद तेज मानी है जात है अजात है जगत रूप लेखी है अभेद है अदाग है अछेद प्रिय प्रीति है अदाग है अछेद प्रताप प्रीति है न करम है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जम है न तंत्र है न प्रभाव रलाव है रह रल है न चित्र है न चित्ताव सर लचल है मंत्र है न चित्र है न कंज से विभूत है न अंत है न कंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है न आद है न काल है न व्यापार है न विचार है न रंग रंग रूप है न रूप रेख रान है न भाव है न भाव है न दाव को प्रकार है न दाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करंत से वजाधपि द्रपति तपस्वती बनस्पति चपस्वती प्रसाद रूप रंग रेख रंग न जन रूप प्रवीण आद जान प्रति प्रति धर्म धर्म प्रवीण आद परम सो धर्म धर्म प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जन को आद पर धर्म पार रात की बात है रत स्वभाव मैं रत की बात है रत स्वभाव मैं रत जाद बात न जाद जन को मंत्र मात बात न सर बढ़ावर विखे रम योग जन जन रहन जन आद देव दार मूर्त गाद ना दान देव आद गुण जानी अविनाद देव मंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न की न आवे बड़ा बड़ा रहे रोपे राज दिराज राज प्रभी रहे रोपे राज दिराज राज प्रभी राज तंत्र अब देव दान वना ब्रह्म जाति अन्न रहे वैसे वन्ना के बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे बिखे ब

दुर्जन दल दल जय मन दल जय सुर दल जय रोह रण दल जय जय हो से रोह हास मन दल

लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ही है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भूख न वह देह विहीन सुने सभोतन नेह विरक्त गेह अच्छे है। जान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद मा बदल है। रोगंते और सोगंते जल जो गंते वो बांध बचावे शत्रु अनेक जलावत घाव तऊ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूहन भेट न पावे और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सभी सादर जाच भुजंग सब सिर न्यावे। को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सभी खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रूम नारिक से सब हो मिल गायो वेद कते बन भेद रखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पारो मापद सिद्ध सनात सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मय जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान भेद निपान सब न शोक न सं

फिरे कर वे संबोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख करे दीन दयाला काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तो प्रसाद कपित अत्र के चलैया चित छत्र के थरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया वसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्ध के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना कितेक बांधे आरब के आरबी।

अनमानत महामूड कश महादेव भिन्न भिन्न तोय तेती तुमरा लखा न जाय सारा।